एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी। जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी। एहसास कर

अपने खातर दुनिया मर दी मिट दी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है। मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है,

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बस ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च 2 रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगतां जुतियां नू, जिथे रब कर संगतां जुतियां।

अगे पूछ हलौंदा ए लख सच्चा होवे बिन पैसे बस उसनू थल्ले लौंदा ए कैड़े ओ भी बसण पदौड़ सदा चिकके ओ भी बसण पदौड़ सदा जिन्हां रखियां सोचां उच्चियां ने या

जेकर मैनू मिलना होया मेरी मड़ी ते पिछले पैर जावी, नी मैथों वक्ख होण तो पहला मैनू देके थोड़ा जहर जावी।

पासे खुदाइया सबे चलिए ता एक कर्म कमानी कड के कोई वैर जावी चलिए ता एक कर्म कमा

मैं सदा तेरे नादार उड़ाने हानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया रादा रोड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा। मेरे कुप हनेरे नू

0: दिन रात मेहनता कर दे हां मजदूर पक्की सरकारा होन जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत करदे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसी हुणे ही कुलवंत सिंह सैदो जी दी कविता जिंदगी असी मजदूर तेरे सुन के हटे हो। ते हुण मैं तुहाडे सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवे उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़ दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लैके हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसी पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्होंने कीती आ ओह गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसे नूं दिल तो ही जा सकता है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकता है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकता, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओह सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। करी करी के मैनू याद रोया करेंगी तू, करी करी के मैनू याद रोया करेंगी तू, पलिकानू हंजुआ दे नल पिगोया करेंगी तू, करी करके मैनू याद रोया करेंगी तू, हाय करी करके मैनू याद। बदलां दे विच, बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन्नी जदों मुस्कुराएगा,

किसे पागल इशक दे विच हो के, विच हो के हाय विच हो के। किसे पागल इशक दे विच हो के, पत्थर खा के जिस्म छिला लेते। किसे आशिक बन के नैर पुट्टी, नैर पुट्टी हाय नैर पुट्टी। किसे आशिक बन के नैर पुट्टी, पट इश्क दे पर ना गए सीते। इस कड़ी दो कड़ी दे इश्क नेता है इश्क नेता। इस कड़ी दो कड़ी दे इश्क नेता, कारोबार नू दिते लवाप लिते। किसे चढ़ के

0: रोते रोते जो हम मुस्कुराने लगे।
1: जी
0: मैंने पूछा के मुझसे मोहब्बत है क्या,

0: एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए। एक लम्हे, शमी भाई जी सुनियो गल,
1: जी
2: जी
0: एक लम्हे में वो रूठ कर चल दिए, और मनाने में हमको जमाने लगे।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ
1: क्या बात है,
2: बहुत ही कूल।
0: रोते रोते वो मुस्कुराने लगे। आगे कहना है, रात में हमको सोने की फुर्सत कहाँ, रात में हमको सोने की, कहना रात च सानू सोन की फुर्सत कित्थे है,
1: जी
0: रात में
2: जी

0: लगे
1: क्या बात है।
0: रोते रोते हम मुस्कुराने लगे।
1: बात ही
0: अगेगा नहीं वो काल दी जिंदगी बारे पूछता भी कल नू की होएगा।
1: जी
0: बोलेगा ना

0: अगेन।
1: बात
0: रोते रोते हम मुस्कुराने लगे।
1: बात
0: ओदा कारण यह सी भी जदों अगले दिन दी जिंदगी दा पता पुछिया ना, जदों फुल टाहणी नाल टुट जांदा है ओ
1: जी
0: नाल दी नाल मुरझा जांदा
1: बिल्कुल
0: है,
1: है जी,
0: ओदे
1: मर
0: करके ये
1: जाता
0: लाइन है, ओ लाइन कही गई भी कल दी जिंदगी दा जो पता पुछिया ना, ते ओ जेड़ा जिन्नू पुछिया ओ टाहणी नाल तोड़ के फुल विखाण लग्या भी
1: जी,
0: आ जिंदगी है, भी जे
1: बिल्कुल
0: टुट
1: है जी,
0: गई तो मुरझा जानी है नाल दी नाल है।
1: बिल्कुल है जी,
0: ते आ एक एक
1: वाह
0: लाइन अज दी जिंदगी दे शमी भाई जी
1: जी
0: सुनियो जरा।
2: जी हाँ जी।

0: हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों। प्रोग्राम सिक्ख्या ते रुजगार लैके मैं समरजीत सिंह शमी तुहाडी सेवा च हाजिर हाँ। तुसीं सुन रहे हो दुआबा रेडियो, तुहाडी अपनी आवाज़। दोस्तों, सिक्ख्या ते रुजगार दे विच तुहानूं पता है कि असी वख वख जो मुद्दे ने जुड़े हुए विषय दे नाल, चाहे वह काउंसलिंग होए, चाहे वह रुजगार नाल जुड़ी हुई कोई गल होवे, उहदे उत्ते आपां चर्चा करते हैं, सिक्ख्या नाल जुड़ियां गल्लां करते हैं, एजुकेशन दे उत्ते गल करते हैं। तो इस सारे प्रक्रिया दे विच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिहड़ा विषय है वह आता है पेरेंटिंग, यानी कि बच्चे का पालन पोषण। सो अज इस महत्वपूर्ण विषय के उत्ते गलबात करन लई साडे नाल जुड़े ने पैनलिस्ट डॉक्टर भावना गुप्ता जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब तुहाडा।
1: थैंक यू।
0: तो दोस्तों, डॉक्टर भावना गुप्ता जी को चेयरपर्सन हैं टर्न अराउंड एजुकेशनल एंड कंसल्टेंसी सर्विसिज जलंधर। तो इस तो इलावा वो बतौर डॉक्टर भी प्रैक्टिस करते हैं, तो काउंसलिंग दे विच बहुत सरगर्म ने, तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग वो दे रहे ने, तो स्टूडेंट्स नू करियर गाइडेंस दे विच उन्हां दा बहुत वड्डा जिहड़ा समां जिहड़ा लगता है, बहुत योगदान है उन्हां दा। तो विशेष तौर पर पेरेंटिंग वर्कशॉप्स वो ऑर्गनाइज करते हैं, तो उहदे विच मापियां नू किवें जिहड़ा गाइड करते हैं, अज आपां जाणांगे उन्हां कोलों। तो डॉक्टर साहब, सब तो पहला तो जो सवाल ये आता है मन दे विच कि पेरेंटिंग की है, पालन पोषण की है, इन्हें आप कैसे डिफाइन करते हैं?
1: जी, पेरेंटिंग सब तो पहला सानू ये समझना चाहिए कि सब तो कॉम्प्लीकेटेड जॉब और फुल टाइम जॉब है पेरेंटिंग।
0: जी जी,
1: इहदा कोई निर्धारित समा नहीं है। जब तक तुसीं पेरेंट्स हो, पेरेंटिंग चलती रहती है।
0: जी जी,
1: एक बच्चे नू पैदा करना, उस दियां जरूरतां पूरियां करना, और जिस तरह आपां कहने कि सारे इदां ही पलदे है,
0: जी जी,
1: ये पेरेंटिंग नहीं है। पेरेंटिंग इस तो वध के है कुछ।
0: जी,
1: तुसी एक बच्चे नू ओ बनाना जो तुसी बनाना चाहते हो, उसनू टाइम

0: मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हाँ सुखबीर जी कि तुसीं मैनूं अपने इस बड़े ही वधिया प्रोग्राम दे विच मौका दिता अपने विचार सांझे करन दा, और मैं धन्यवाद करदी हाँ दुआबा रेडियो दा भी। थैंक यू।
1: हाँ जी, सब तो पहले आप गल करनी चाहेंगे कि साड़ी नौजवान पीढ़ी है जी, वो बड़ी दुविधा के रहती है कि
0: हाँ
1: वो
0: जी
1: भविख बनाने लिए अपना रुजगार का खेत्र कि चुनना,
0: हाँ
1: ये बारे
0: जी
1: तुम उन्होंने की कहना चाहोगे?
0: बिल्कुल सही क्वेश्चन है जी। ये बहुत ही वधिया तुसी क्वेश्चन पूछ रहे हो कि साड़ी जेड़ी नौजवान पीढ़ी है, स्पेशली जेड़े साडे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स ने,
1: हाँ जी
0: बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं इस स्टेज ते आके, 9th 10th या 12th दे विच आके, कि असी केड़े खेत्र च जाना है, या फिर असी केड़ा डिप्लोमा करना है, या फिर असी केड़े कोर्स च एडमिशन लेनी है।
1: हाँ जी
0: ये बहुत ही ज्यादा कंसर्न वाली गल है उन्हां दे लिए, क्योंकि उन्हां दा पूरा जो फ्यूचर है
1: हाँ जी
0: उसदी चोन उन्होंने इस मोमेंट दे उपर करनी हुंदी है कि असी केड़े केड़े खेतर दे विच जा सकते हाँ।
1: बिल्कुल
0: मोस्टली
1: जी
0: बच्चे की करते हैं कि इस स्टेज दे उपर आके काफी सारी जिहड़ियां चीजां ध्यान देने वालियां ने, कि असी जदों बच्चे चोन करते हैं कि उन्होंने केड़ा विशा लेना है,
1: हाँ
0: या
1: जी
0: फिर उस तो बाद वो केड़े कोर्स दे विच जाना चाहते हैं, या फिर उस तो बाद नेक्स्ट जिहड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि वो केड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट दे विच एडमिशन लेंगे।
1: बिल्कुल जी
0: इस सारी ही चोन उन्हां दे पूरी लाइफ नू बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इत्थे,
1: हाँ जी
0: कि उन्हां दी सारा जो फ्यूचर है वो सारा ही इस चोन दे उपर खड़ा हुंदा है कि वो केड़ा डिप्लोमा या डिग्री जे विच एडमिशन लेंगे, और उस तो बाद वो केड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी दे विच पढ़नगे।
1: ठीक है जी
0: मोस्टली जेडे साडे बच्चे हैं वो कोशिश ये करते हैं कि असी जेड़ा विषय है कुछ आसान जा विषय चूज करिए, या फिर कुछ ऐसा चूज करिए जेड़ा कि असी जिदे विच असी स्कोर ज्यादा ले सकिए।
1: हाँ जी
0: बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि असी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स लईए ताकि असी 90% 99%, जो बच्चे बहुत ही ज्यादा कंसर्न रखते हैं अपने फ्यूचर नाल, तो अक्सर ये चीजां नूं सोच के ही अपने विषय चूज करते हैं कि असी उही विषय लईए जिन्हां चो साडे स्कोर्स ज्यादा आंदे हैं।
1: बिल्कुल जी
0: तां एक तां ये चीज थोड़ी जी मतलब इस नूं आपां थोड़ी रोंग अप्रोच कह सकते हैं,
1: हाँ जी
0: क्योंकि सिर्फ एक स्कोरिंग दे लई असी सब्जेक्ट चूज करांगे तां वो ज्यादा कोई मैटर नहीं करूंगा। ज्यादा मैटर ये करता है कि केड़ा जो सब्जेक्ट है तुहानू इंटरेस्टिंग लगता है, केड़े
1: हाँ जी
0: सब्जेक्ट दे विच जाके तुसी एक अच्छा फ्यूचर जो है उसका निर्माण कर सकते हो,
1: बिल्कुल जी
0: ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है।
1: हाँ जी
0: तां हुण इस जगह ते असी बच्चों नू यही मैं कहना चाहूंगी कि वो हमेशा ये देख के ही विषय की चोन करन कि उन्हां दे लई जिहड़ा विशा बहुत ज्यादा उन्हां नू लगदा है कि हाँ इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आ रहा है उन्हों पढ़ के,
1: हाँ जी
0: तां उस विषय नाल रिलेटेड जिहड़ियां स्ट्रीम्स निकलदियां ने अगो दी अगो, ठीक
1: हाँ
0: है।
1: जी
0: फॉर एग्जाम्पल तुसी फिजिकल एजुकेशन नू लै लो, अगर बच्चे नू लगदा है कि मैनू फिजिकल एजुकेशन पढ़ना अच्छा लगता है या फिर फिजिकल एक्टिविटीज च पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है, तां ओह फिजिकल एजुकेशन दे नाल रिलेटेड जिहड़े फील्ड निकलदे आ, डिप्लोमास या डिग्रीज निकलदियां ने, उन्हां च एडमिशन लै सकते हैं ताकि उन्हां दा फ्यूचर भी सिक्योर हो सके, प्लस उन्हां दा जो इंटरेस्ट है वो
1: हाँ जी
0: भी फुलफिल हो जावे, है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: जी
0: तां ये चीज होगी। नेक्स्ट दूसरी चीज जिहड़ी सानू ध्यान रखने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिदे वल मोस्टली बच्चे ध्यान नहीं देंदे हैगे,
1: हाँ जी
0: वो है साडे इंस्टीट्यूट कॉलेज या यूनिवर्सिटी दी सिलेक्शन करना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: बच्चे की करदे हैं, विद्यार्थी की करदे हैं, वो अक्सर ये सोचते हैं कि जो सानू अप्रोचेबल है, जो साडे पिंड तों या फिर साडे शहर तों बड़ा नेड़े जे पैंदा है सानू कॉलेज, असी उत्थे ही एडमिशन लै लैने हां। स्पेशली गर्ल्स जिहड़ियां ने, वो काफी ऐसियां गर्ल्स, मैनू मेरे काउंसलिंग प्रोफेशन च काफी ऐसियां गर्ल्स मेरे नाल मैनू मिलन मिलियां ने जिहड़ियां कि कह दिंदियां ने कि मैडम असी करना तो ये चीज चाहते हां,
1: ठीक
0: बट
1: है
0: साडे जो पेरेंट्स है वो सानू बाहर पढ़ा नहीं सकते, इस करके असी कोई होर विषय चूज कर लिया। तां
1: अच्छा
0: ये
1: जी
0: भी बड़ी दिक्कत दी गल है कि साडे जो बच्चियां नू फेस हुंदी है कि वो करना कुछ होर चाहते हैं, करना लाइक वो LLB करना चाहते हैं।

जेड़ा कपड़े करे करोड़ा बिच बसे ओनू लीडर मन देने। पेन बैंक च दो रुपया दा जेनू तागे दे नल बन देने। जिथे रब कर संगता जुतियां नू, जिथे रब कर संगता जुतियां।

मैं सदा तेरे नादार उड़ा रेहानी निकल गया दार उड़ा मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मैं सदा तेरे रादा डोड़ा रेहानी निकल गया दा रोड़ा मंजिल दे ना मंजिल दे वाले चले सी नी मंजिल दा हुन राए थोड़ा मेरे कुप हो नेरे नू

0: दिन रात मेहनता कर दे हां मजदूर पक्की सरकारां होण जे फिर खुदकुशियां क्यों कर दे हां। कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, कुलवंत हक्कां नूं समझे ना कोई, ताइयों हक्कां दे लई लड़दे हां। ऐ जिंदगी असी मजदूर तेरे जिउण लई मेहनत करदे हां, जिउण लई मेहनत करदे हां।
1: प्यारे श्रोतेओ, तुसी हुणे ही कुलवंत सिंह सैदो जी दी कविता जिंदगी असी मजदूर तेरे सुन के हटे हो। ते हुण मैं थोड़े सन्मुख पेश करन दी खुशी ले रहा दिलशाद अली जी नूं। दिलशाद अली जी जिहड़े पंजाबी दे नवे उभर दे गायक हन, ते ओ बहुत वधिया सुरीली आवाज़ दे विच अपने गीत जिहड़े पेश करदे ने। साडी अज दी इस गाउंदी शाम दे विच ओ एक रचना लैके हाजिर हो रहे ने, करके मैनू याद रोया करेंगे। आस करदे हां कि इस रचना नूं तुसी पूरा माणोगे, ते जिन्हां दे दिलां दी गल उन्होंने कीती आ ओह गल भी उन्हां तक पहुंच जाएगी। ते क्योंकि रोया किसे नूं दिल तो ही जा सकदा है, हसण वेले तां बंदा ओपरा भी हस सकदा है, पर रोण वेले उपरों नहीं रोया जा सकदा, सिर्फ दिलों रोया जांदा है। जदों हाय कही जांदी है जां रोया जांदा है, ओह सिर्फ रूह तों, दिल तों ते दिमाग तों रोया जांदा है। ते दिलशाद अली जी साडे स्रोतियां लई अपना कलाम लैके हाजिर ने। दिलशाद अली जी, तुहाडा दुआबा रेडियो दी गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है।
2: रचना गजल कुछ इस प्रकार है दोस्तों। करी करी के मैनू याद रोया करेंगी तू, करी करी के मैनू याद रोया करेंगी तू, पलकां नूं हंजुआं दे नाल पिगोया करेंगी तू, करी करके मैनू याद रोया करेंगी तू, हाय करी करके मैनू याद। बदलां दे विच, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, बदलां दे विच चन जदों मुस्कुराएगा, चेहरा मेरा फेर तैनू